इश्क भी आरा करके देख लिया, जिंदे जी भी मर के देख लिया, घूट सबर का भर के देख लिया, ई बटिया में खून नहीं है, सब कुछ पा लिया जिंदगी में, पर जिंदगी में सुकून। रेडियो